result of the powers given by the constitution. But एक peculiar बात है Indian constitution की कि इसमें बहुत लोग बहुत एक school of thought है जिनका मानना है कि environmental constitution environmentally blind था in the very beginning when in 1950s it was adopted because the term environment, environmental protection, ecological conservation ये सारे terms नहीं थे उसमें. But other school of thought on the other hand, which I also agree with, says that silence on the word environment does not mean कि कोई इंटेंट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का. लेटर ऑन वी विल सी कैसे आर्टिकल 21 जो कि हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहा है उसको ही यूज करके हमारी ह्यूमन राइट्स एंड राइट टू डिग्निटी

0: साइलेंस ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डज नॉट मीन कि कोई इंटेंट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का. लेटर ऑन वील सी कैसे आर्टिकल 21 जो कि हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहा है उसको ही यूज करके हमारी ह्यूमन राइट्स एंड राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 को यूज करके इन्वायरमेंटल राइट्स आगे इवॉल्व हुए हैं. और ये मेन प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के इन्वायरमेंट के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 48A में और फंडामेंटल ड्यूटी जो सिटीजन्स की होती है वो 51AG में मेंशनड है. ऑल्दो ये दोनों ही राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो कि पार्ट 3 में होते हैं, लेकिन इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डेवलपिंग एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस. क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की पहले आर्टिकल में ये लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ अ नेशन. सो ऑल्दो इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल कंसर्न ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड फ्यू मोर प्रोविजन्स जो कि यूजुअली छूट जाता है लोगों के नोटिस से, क्योंकि 48A एंड 51AG आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. बट इफ यू लुक एट द प्रोविजन्स रिलेटिंग टू लोकल गवर्नमेंट विच इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, उसमें भी एक्सप्लिसिटली फंक्शंस में उनके मेंशनड होता है. इफ़ यू लुक एट पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल गवर्नमेंट जनरली, कि यू हैव टू मेक अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो जो डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज़ हैं उनके रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का मेंशन है. तो ये ऑलरेडी हमारे भले ही वो मॉडर्न लेजिस्लेटिव सेंस में हमारे ज्यूरिसप्रूडेंस में नहीं रहा हो, वो 1972 के बाद आया हो, बट intrinsically Indian jurisprudence always had an important, it always had given importance to environmental preservation. So if we can see 1972 mein conference hua, uske baad 1974 mein Water Act aaya, 1980 mein Forest Conservation Act, 1981 mein Air Conservation, Air Prevention and Control of Pollution Act, and finally 1986 mein Environmental Protection Act, which is more of an umbrella act jisme sara environment ki sari cheeze cover hoti hain. But that came after the Bhopal gas tragedy specifically. Central Pollution Boards जो होते हैं जो Water और Air Act के under काम करते हैं, and EIA notifications जो कि Environmental Protection Act के under से ही emanate करता है. And then talking about international commitments, then again after Stockholm, India has become a part of all of these conventions. Convention of Biological Diversity, UNFCCC, Paris Agreement, in which many countries, many big countries of the world are exiting and entering it again and again, but India has been committed to its principles under Paris Agreement. Then Convention on Wetlands, Sites and Basel Conventions, jo wetlands ki baat karta hai. Toh also we know, toh after adopting all of these international commitments, we have also, as far as possible, the parliament has also adopted it into our domestic law. So this is jurisprudence. Mein, when we talk about jurisprudence, it is all about law. So I'm talking about in a right-based manner, ki kitne tarike ke rights hain. Environment law kahan kahan se aa sakta hai. So ye constitutional rights or fundamental rights, kyunki like I mentioned in the very beginning, usme mentioned nahi tha constitution mein shuruaat mein, to wo dheere dheere develop hua through amendments, but usme supreme court ka particularly kaafi important role raha hai. So starting with one of the cases, so it is something which people say in environmental law circles, ki if we talk about the journey of environment law, wo kisi रिवर से या ट्री से नहीं शुरू हो रहा है, फॉरेस्ट से नहीं शुरू हो रहा है, वो एक ड्रेन से शुरू हो रहा है. बिकॉज दिस इज द केस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दी चंद का केस, जिसमें देर वॉज एन ओपन सीवेज सिचुएशन, सैनिटरी इशूज थे एक छोटे से टाउन में मध्य प्रदेश के. वहाँ पे सिटीजन्स वेंट टू कोर्ट एंड दे आस्क द मैजिस्ट्रेट टू इंटरवीन बिकॉज स्टैट्यूटरी मैनर में CRPC जो पहले हुआ करता था, विच इज़ नाउ BNSS, उसमें प्रोविजन थे कि पब्लिक न्यूजेंस के फॉर्म में कैसे उसको रिमूव किया जाए. बट वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी का और अथॉरिटीज़ का ये डिफेंस था कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं है, वी डू नॉट हैव इनफ फंड्स टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि द सिटीजन्स हैव चोजन टू स्टे इन अ पोल्यूटेड एरिया, सो इट इज़ देयर चॉइस, नाउ दे हैव टू डील विद इट, सॉर्ट ऑफ इस तरह का अप्रोच था.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: persons who were not directly affected. तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीगल कॉन्सेप्ट विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई. उसमें ये बोला जाता है कि जिस जो इंसान अफेक्टेड है वो ही कोर्ट में जा सकता है. बट बाई मीन्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया. तो इवन इफ एनी पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड, इवन वेन दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द आउटकम, इवन दे कैन गो टू कोर्ट. तो पहला एस्पेक्ट तो ये था. दूसरा, कोर्ट ने ये करा कि लेटर्स और टेलीग्राम्स के फॉर्म में भी जो लेटर लिखा जाता था, बहुत सारे ओपन लेटर्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे लेटर्स कभी कभी जाते थे जिसमें एक स्पेसिफिक लीगल प्रॉब्लम, स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बताई हुई होती थी. कोर्ट ने उसको रिट पिटिशन के फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट करना शुरू कर दिया. तो इवन ए पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू हायर अ लॉयर और उसको पूरी कोर्ट की वो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज़ नहीं पता है, उनकी बातें भी कोर्ट तक पहुँचने लग गई. थर्ड वॉज सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट लेने. नाउ NGT ऑल्सो टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जिसमें अगर कोर्ट या किसी जज ने या कोर्ट की रजिस्ट्री ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट सॉरी न्यूज़पेपर्स में कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की एक्टिविटी हो रही है विच इज़ नॉट मे बी कोर्ट के सामने अभी तक नहीं आई है, तो कोर्ट ने वो खुद से ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उस पर काम करना शुरू कर दिया. चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स, जिसमें ए वर्सेज बी का फॉर्मेट रहता है कोर्ट में, उसको हटाकर कोर्ट ने बोला कि एनवायरमेंटल मैटर्स में, क्योंकि तो कोर्ट मेड एक्सपर्ट लेवल कमिटीज़ और उनको बोला कि आप टाइम लीजिए, साइंटिफिक इवैल्यूएशन करके हमें फाइंडिंग्स बताइए. बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स देन कोर्ट गेव वेरी रीजंट रिस्पॉन्सेज. अदर देन दिस, मॉनिटरी कंपनसेशन, इक्विटेबल रेमेडीज भी कोर्ट देने लग गई एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल इशूज. अब जो दो मेन आर्टिकल की बात होती है राइट्स चैप्टर में, वन इज आर्टिकल 19 एंड वन इज आर्टिकल 21. आर्टिकल 19 बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसमें कोर्ट ने रीड किया हुआ है राइट टू नो. तो इसमें राइट टू नो कोर्ट ने कैसे इम्प्लीमेंट किया कि उसमें कोर्ट ने अथॉरिटीज़ को कंपेल किया कि आप जो सैनिटेशन प्लान्स हैं अपने या बिल्डिंग बनाने की जो परमिशन स्लिप्स हैं वो सारे कुछ प्रोड्यूस करना, एंड द सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज प्लान्स. तो उस तरह से कोर्ट ने इसको इम्प्लीमेंट किया. एंड आर्टिकल 21 में I will be a little brief. Article 21 में there were few cases, जैसे starting में court ने Article 21 का नाम नहीं लिया लेकिन बात की कि there is a right to live in a healthy environment. वो Doon Valley का case था, specifically speaking rural entitlement केंद्र versus state of Uttar Pradesh. इस case में मसूरी में mining हो रही थी तो उसको रोक करके court ने बोला कि there is a right to live in a healthy environment. But उसमें Article 21 mention नहीं किया. But eventually आगे चल के दो तीन cases के बाद, इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था जिसमें कोर्ट ने बोला कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, होलसम इन्वायरमेंट विथ फ्री क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर इज द राइट अंडर आर्टिकल 21. सो नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर कोई राइट आपका फंडामेंटल राइट बन जाता है तो एट द सेम टाइम यू गेट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32. तो उसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. अगर कोई चीज़ आपकी फंडामेंटल राइट है तो बारिंग ऑल कोर्ट्स यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. And you must have heard the name of M.C. Mehta. He was a big-time environmentalist and litigator. तो इनके नाम पे बहुत सारे cases हैं. जो law school में जाते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा इनका नाम सुनते हैं. Generally भी environment circles में he is one of the most important figures. तो once you get a right, what M.C. Mehta did is he filed petitions in court using Article 32, जिससे उनको actual remedy मिले. क्योंकि जब एक where there is a right, there is a remedy. So now the court has established a right under Article 21. So there is a remedy as well involved. So for example, I have given the example of two cases, Ganga pollution case as and the oleum gas leak case. So just to take one example, in the M.C. Mehta versus Union of India case, M.C. Mehta went to court and it said that ये tanneries से जो पानी, जो chemical factories और tanneries से जो waste निकल के पानी में जा रहा है, which is polluting the Ganga river, eventually the court had to order to shut down these tanneries. So this now right has taken in the form of a remedy as well. Indian Council for Enviro Legal Action, इसमें court ने पहली बार एक हाई लेवल पे इन्वायरमेंटल रिमीडिएशन के लिए कॉस्ट पे करने के लिए बोला केमिकल फैक्ट्रीज को. एंड द TN गोदावर्मन केस, लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इसमें कोर्ट ने कंटिन्यूइंग मैंडमस इशू किया जिसमें कोर्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन का ये ओरिजिनली केस था और अभी तक इस पे ऑर्डर्स और हियरिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में. सो दीज वेर द मोस्ट फर्टाइल ईयर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें राइट्स और रेमेडीज काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व किए गए.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है.
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Jurisprudence.
2: सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरी जर्नी में है कुछ अगर तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का. इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड टेकिंग अप पिटिशंस बाय